पगती करते हैं। जो अकाल पुरख का सिमरन करते हैं, पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज आप कहते हैं, फिर ओ परिपूर्ण परमात्मा सदा उन्हां जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन दे पातशाह दा उचारण कीता होया, जिदे विच आप कहंदे हन, हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान, हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावा, हर का नाम हृदय नित त्याई, सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपा, मन करके जपा, हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है, नाम जपे है और जपणगे, हे प्रभु कृपा करी उन्हां सारियां नूं ही अपने नाम दे सदके तार लें। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन दे पातशाह क्यों दिन, फिर उन्हां दे अंग संग हुंदा है गुरु। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जो सिमरनगे परमेश्वर दा नाम, साईं दा नाम, आखे सदा गुरु उन्हां दे अंग संग है। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। और जद नाम जपेगा प्राणी, नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करते सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जाता। हर हर जन दो एक है, बिप विचार किच नाही, जल ते उपज तरंग जियों, जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पाणी मंदा है ते की कहिंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया है, मैनू दुख विच रखिया है, ए तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन दे पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच यही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्श, मैं तेरा सिमरन करा, अमृत वेले उठ के तेरी भगती करा। और जो परमात्मा दी भगती करते हैं गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, ते चंदू पापी अजे भी मन एदा ठरिया नहीं। आख्या रेत तपाओ, रेत तपाई पड़पूंजे नू सदिया, जो दाने पुंदा सी के तू अपने कड़छे पार पार के गर्म रेत लैके अर्जुन दे सिर विच पा। साथ संगत बोलो श्री तलों तत्ती तवी अग बल रही है, उत्तों गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं, साहब जी दे जदों भी बुल फरकदे हन तां विच्चों एही आवाज आउंदी है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साईं मियां मीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हन, जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गए कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हन, उत्ते गर्म रेते पै रहे हन। हाथ जोड़ के बेनती की, गरीब निवाज एक ही पाना है। साहब जी कहन लगे, साई मियां मीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ के जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाएं। ता आवेख ले अग्न विच शरीर जल रहा है, तन तप रहा है, मन शांत है हरि नाम से। अंदर परमेश्वर दा नाम वसया है, अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नु, आ शरीर नु क्या दुख देवेगा ए चंदू। साई मियां मीर जिसने हरबंदर साहब दी नी रखी सी, जात दा मुसलमान सी, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी, ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मियां मीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया तां नीव हरमंदर साहब दी मियां मीर पासों रखाई कि ए सांझी वालता दा घर है, गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है। मियां मीर ने बेनती की, गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे, शक्ति नहीं दिखांदे, तां मैनू हुक्म करो, मैं दिखावां। साहब जी कहन लगे, मियां मीर करना वड्डी गल नहीं है, जरना वड्डी गल है, शक्ति होंदिया होया जर लेना ए वड्डी गल है। ता उपर वेख गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या, हजरत मियां मीर उपर तक जां उपर देखिया ता 33 करोड़ देवी देवता हाथ बन्ने खड़ोते हैं, गरीब निवाज सानू हुक्म करो, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह पाणी विच बैठे हैं ते की कह

जिस वेले आख्या गुरु अर्जन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिद्धक वाले, उतने ही सिख सिद्धक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तो साहब जी कह लगे चंदू साडा मन करदा असी स्नान करिए, तीन दिन हो गए हैं चौकड़ा मार के बैठे हैं, साढ़े प्यार वाले जेड़े नाल आए सन उन्होंने बुलाओ। वो प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह प्यार नाल जिस वेले रावी दे किनारे दे लियाए साहब जी कह लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समा आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे ते जपजी साहब दा जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच ते तुसी वापस हरमंदर साहब अमृतसर चले जाना। ते ए सब नू आखना के गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख दे पाने विच रह के उस दे हुकम विच अपना सिर नवाए। ते जपजी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी ते जिस वेले जपजी साहब दा भोग पाया जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक दे मुख उजले केती छुट्टी ना रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास, मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे तैये,

का सरहंस सरसा नदी तो विछड़ के माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादे मुगल सरकार की कैद विच साका सरहंस।

धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह अकाल पुरख वाहेगुरु की उस्तुति करदे हां। हे वाहेगुरु, सब खंड ब्रह्मंड ए धरत आकाश कोट ब्रह्मंडा दे विच तू आप ही तो वस रहा, कोई दूसरा है ही नहीं।

जी, नाम जपदिया जपदिया ऐसी बिरती आप दी ब्रह्म ज्ञानियां दी अवस्था प्राप्त हुई के ठाकरां दे इशनान करन लई जल परन गए ते मन विच ख्याल आया भई 42 लख जी जल में होते बीठल पैदा काहे करो। 42 लख जून जल विच है, 42 लख जून इस धरत आकाश ते है, हुन बीठल नू मैं वखरा किवें भोग लवावा। हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जिथे किथे तू ही तू है, कोई दूसरा नजर ही नहीं आ।

रोज पढ़दे आ। राती रुती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ए धरती मालक ने धर्मशाल बनाई, धर्मशाल ओनू कहने जिथे धर्म कमाया जावे, धर्म दी गल चले। ए धर्मशाल ओनू भी कहंदे ने जिथे रात दी रात रह के अगे तुर जाना हो। ए धरती दोवां तरह नाल धर्मशाल है, इथे असी धर्म कमाउण आए, धर्मी होण आए आ। मनुख जन्म मिलिया तां धर्मी होना है, पर नहीं साडे कोल तां गलती हो गई, पसारे पा के बह गए। महाराज कहंदे ने तां उस तरह गल है जिवें कोई चरवाहा पशु चराउण वाला अपना इजड़ लै के किसे चरागाह विच किसे ऐसे थां ते जिथे पशुआं नूं चारा सौखा मिल सके उथे लै के आया। पशु चर रहे ने, पशु घा चर जाणगे, रज जाणगे, मोड़ के टिकाणे ते लै जाणा। चट घड़ी दी खेड है, कुछ घंटिया दी गल है, लेकिन चरवाहे ने उन्हां घंटिया वास्ते उस जगह ते मल मार ली, उथे पसारा करना शुरू करता, पकड़ करके बैठ गए। बल्कि इथों तक भी कई बारी कहिंदा है मेरी चरागाह है, मेरे पशुआं दे चरण दी थां है। हालांकि ना पशु ओहदे, ना धरती ओहदी, ना मलकीयत ओहदी, बिल्कुल एवें बंदे नाल होया। धरती ते आया सी, जीवन मिलिया सी धर्म कमाउण वास्ते ते आके तुर जाण वास्ते, पर इह तां पकड़ करके बैठ गया। धर्मशाल नूं घर बना के बह गए, पसारा पा के बह गए। महाराज कहंदे ने जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमाव है आदमी बंद है घर बारा। ऐसा ना समझना कि जो कुछ संसार दी उसारी है ये रोक दिती जावे, कंस्ट्रक्शन रुक जावे, ऐसा नहीं है। संकेत सतगुरां दा, क्योंकि गुरु घर विच तां आप बड़ियां बड़ियां वड्डियां उसारियां होईयां, और साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह दे कोल एक साईं लोक ने प्रश्न भी कीता सी। कहन लगा महाराज की फकीरी ते की ये उसारियां, किले कोट नगर बड़ा लंबा चौड़ा पसारा है। महाराज ने क्या उरे हो, नेड़े हो जरा। सिर ते हथ रखता साहिबां ने, महाराज ने सिर ते हथ रखिया, एकदम की वेखदा है किसे स्वर्ग लोक च पहुंच गया, किसे बहिष्ट विच जा पहुंचे हैं। लेकिन देखिया उस स्वर्ग विच, उस स्वर्गी वातावरण विच कुछ रूहां कुछ आत्मावां ऐसियां भी ने, कुछ स्पिरिट्स ऐसियां भी ने जिन्हां नूं उचेचा सुख उचेचा आराम ते उचेचा सहूलतां दित्तियां जा रही ने। पंगूड़ियां विच पै के झूट रहे ने, हैरान हो गया, पुछदा है एक ही पंगूड़े विच झूटदी मौज माणदी एक आत्मा नूं पुछदा है, कहिंदा है ऐसा केड़ा पुन तू कीता है, स्वर्ग स्वर्ग विच होर महास्वर्ग, सुखां दे वातावरण विच होर वधेरे सुख, ये तैनूं किस पुन करके मिले है। वो आत्मा कहिंदी, वो रूह कहिंदी, वो कहिंदी साईं लोका मैं शेर दी जूनी छड के आया। कमाल है, शेर नूं स्वर्ग, शेर दी आत्मा नूं, शेर दी रूह नूं स्वर्ग, ते ओह भी परम सुख वाला। कहिंदा कारण है शेर सा बुढ़ा हो गया, अपनी कगार तो बाहर निकलिया शिकार करन, पर कमजोर शरीर करके कोई शिकार नहीं मिलिया, भुखदा मारिया भटकदा फिर रहा सी। उत्तों अचानक घटा आ गई, मैं पिछा नूं परतिया, पर वह घटा पहला वरनी शुरू हुई, फिर गड़े पैन लग पे, बर्फ दे गोले डिगने शुरू हो गए। मैं बहुत तेजी नाल वधिया अपने कुरने वल, अपनी कगार वल, लेकिन इन गड़िया की मार तो बचन वास्ते दो मनुख उस कगार दे विच ही आसरा लेख लोते सन।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲਾਂ

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समे दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने शीपा सलार नू हुकम दिता भाई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नू भी शोध दा जाए उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ

समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली गुरु पंचम।

अंतर जोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज।

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओह प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

संसार अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओ गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणां विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच उस दे अंदर कोमलता रूप मानो एक कोमल बूटा उगदा है जो उस दे शरीर दी तृष्णा नूं सुका दिंदा है। कबीर साहब कहंदे ने, मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उग्या होया एक कोमल बूटा देखिया। साध संगत, ए ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नूं जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए ते फिर ओ इंसान

मैं सिमरन करके गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखा का नाश होंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारियां भुखां तृष्णावां खत्म कर दिंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है, हर इंसान भज रहा, जिद कोल एक चीज है उसनू दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं,

एक अल्लाह एक वाहेगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके ओदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है ता परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हन गुरु दा मेल किन्ना जरूरी।

इतना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे, सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे, तामी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे हुंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा हुंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं हुंदा। रोशनी विच इंसान बैठा हो अंधेरे विच हुंदा है, अंधेरा केड़ा? अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान ए है कि दूसरे दा हक मैं खावा, अपने सुख वास्ते दूसरे दा हक खाना, दूसरे नूं दुख देना, ए है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान ए है कि भाई सारे विच परमेश्वर है, सारे विच खुदा है, वाहेगुरु है, जे सारे विच ओ है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोची

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं, देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कुछ सेवा का चा है, बहुत घट होंदे हैं सेवा वाले, बहुते थे अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंदी, सेवा ते मन होंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनूं भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा, ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगा, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनूं गोते दे दे के मारांगा, और इस गल दा बदला लवांगा कि तू मैनूं श्राप दित्ता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नूं भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत होई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे। गज पत पार उतारे, अनेकां शब्दां विच इस शाखी दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने। ए जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंबदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यो ज्यो अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा। ते हाथी समझ गया, मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया। कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए दा जोर चलिया, ते हाथी नूं खिच

सारे मिल के रसना नूं पवित्र करिए ते मिल के ये दुकान दावीए, क्योंकि कलयुग का ऐसा समा है मनुख का मन हर वेले ही डोलदा रहिंदा, प्रसन्नता विच नहीं रहिंदा। इत्थे भी आके कई वारी मनुख का मन चंचल हो जाता है, डुलायमान हो जाता है। इत्थे भी आके कई वारी मनुख का मन गुरु के दरबार भी नहीं टिकदा। लेकिन मेरे पंचम पातशाह जी आखदे ने, ऐ मेरे वाहगुरु, मैं गरीब हाँ, तेरा आसरा है। संसार विच जदों विचरदा इंज लगदा जिवें मैं डुब रहा हाँ, ते जदों तेरे कोल आउना, तेरे दर्शन करना, मेरे मन नूं कोई धीरज आ जांदा। ते दर्शन दा मतलब ये है कि पातशाह दी बाणी हिरदे विच वसे, दिलां विच वसे, तां ही दर्शन दा। क्योंकि पातशाह ने आख्या, सतगुर नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार, गुर डिठे मुकत ना होवई जिचर शब्द ना करे विचार। जिन्ना चिर गुरु का शब्द हिरदे विच वसेगा नहीं, दर्शना नाल गल नहीं बनदी। सो आओ, पातशाह आखदे ने मेरे मन विच गुरु की बाणी वसे। ते गुरु अर्जन देव जी आखदे ने, प्यार नाल आपां सारे रल मिल के गुरबाणी पढ़िए, कोई रसना खाली ना रहे।

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज

मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी, खत्री कर्म करे सूरत तन पावे, सूद वैस पर कृत कमावे, मैं मूर्ख हर नाम छड़ावे, सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता।

गोविंद ना भजै अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन ते डारे। मोढ़े वस्त्र का

काची दे मानुख अभिमानी इस कच्ची दे दे हंकार च मता होया गलतियां करदा चला जा स्वाद बाद झूठ विच रसा विच ईरख मद माया हंकार विच ईरखा विच माया विच इन संग लाग रसन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया मेरे वाहेगुरु जी तुसी इन्हां पापां दे दुख दूर करन जोग जिन्हां ने जगत नूं जीवन दिता है ओ आत्मक जीवन भी बख सकदे सगल त्याग नानक शरणाया मैनू तां इन्ना भी पता नहीं जीवन मिलिया कादे लई कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया किस काम नूं तूं मैनू सिरजिया सी किस काम वास्ते मैनू जीवन मिलिया है केड़े पुन्ना करके जीवन मिल गया जन्म कवन फल पाया पावनित तरन तारन चिंता मर एक निमुख ना ए मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी मेरे साहब जी असी ता एडे वड्डे गुनाहगार हां जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाव भगत नी साधी जिन्हें जिंदगी दिती है ओनू भी कदे चेते ना इन्ने अकृतक हन के जिसने जिंदगी स्वास खान पान भोजन पहरान सब कुछ बख्शिया है ओदा ही चेता कोई पर धन केड़े पासे मन लगा लोकां दे धन वल वेखदे आ लोकां दे सहीरां वल वेखदे आ पर धन पर धन परती निंदा बुराईयां भी लोकां दीयां वेखियां ने अपनियां नजर नहीं आई लोकां दी निंदिया करदे रह गए ते अपनियां नेकियां दीयां फड़ां मारदे रह गए अपनियां बुराईयां वल ध्यान ना कीता पर अपवाद ना छूटे लोकां नाल झगड़े करदे आ रहे आवा कौन होत है खुण खुण ए प्रसंग ना टूटे यही कारण है मेरा मुड़मुड़ के जमना मरना बनिया होया आउना जाना ते भटकना बनी हुई है कहानी मुकण च नहीं पी आ जे कर कथा होत हर संतन जिथे ता भगत जन बह के रब दी गल करदे ने ओथे एक निमुख ना कीनो मैं तेरा मन करके तन करके पूरे तौर ते मैथों एक पल भी जुड़िया नहीं जाता मन करके मेरा ओथे फेरा नहीं पिया लगता टिकिया नहीं जाता मैथों लंपट चोर दूत मतवारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदिक ते इन्हां दे मारे होए जिहड़े बुरे लोग ने तिन संग सदा बसेरा उन्हां लोकां दे नाल मेरा वासा नित दा बणिया काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपे मोह माही जिंदगी विच कठा मैं की कीता काम कठा कर ले क्रोध कठा कर ले माया कठी कर ले अहंकार कठा कर ले दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही ए नेकी दे काम जिहड़े ने सुपने विच भी नहीं पए आउंदे उंज तां मैं जीवन च की कर ले नेकी ते भलाई मेरे सुपने विच भी नहीं पई आउंदी साहिब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने तां साडा शीशा बनाउण लगियां कमाल करती साहिब कहिंदे ने चेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे समुंदर सागर जिन्ना कु पानी नाल भरिया ए तो बहुते औगण ने साडे कदे कदे ध्यान मारदे रहिए बहुत फर्क पै सकदा सह पंचम पातशाह कोल पिशावर दी साख काबल दी संगत आई सी सूबा सरहद दी संगत आई सी एक सिख ने उठ के बेनती कीती साहिब जी गलतियां बड़ियां गुनाह बड़े हो जांदे साहिब कहन लगे फिर की होया कहन लगे महाराज किवें बख्शे जावांगे साहिब कहन लगे इस तरह करो जदों अगले साल आओगे ना पूरे साल दा हिसाब करके लिया है जेड़ी गलती ते गुनाह होए उहदा भी हिसाब कर लेना लिखी जाना नाल उहदा जेड़ा पुन कर्म करो चंगा कर्म करो भी लिखी जाना चले गए साल बाद आ गए महाराज ने पुछिया याद कराया क्यों भाई गुरमुखो तुसा एक सवाल कीता सी ते असां तुहानूं कहा सी कि अपनियां वहियां बनाओ खाते बनाओ बाप दे ते पुन दे तुसी खाते बनाओ खाते बनाए ने कि महाराज बनाए ते सन लियाओ फिर विखाओ कि महाराज लियांदे कोई नहीं क्यों नहीं लियांदे कि महाराज लिखिया ही कुछ नहीं सी होया कमाल है भाई तुहानूं लिखण नूं कहा सी तुसा वहियां ते खाते बनाए लिखिया क्यों नहीं कि महाराज गल ए है कि जिसले गुनाह कीता लिखण लगे ते सोचिया भी उथे महाराज दी हजूरी च संगत च पढ़ के सुनाउणा पेगा नंगे हो जावा शर्म आ गई लिखण तो शर्म आ गई नहीं लिखिया महाराज कहन लगे फिर पुन कर्म भी कोई नहीं कीता पाप कर्म तां लिखण लगिया शर्म आ गई कि महाराज मेरी शर्म नहीं आई पढ़ के फिर करन लगिया भी शर्म आ गई कि जे तां करांगे ते लिखणे पैणगे महाराज दा हुक्म है जे लिखांगे ते सुनाउणे पैणगे नंगे हो जावा इस करके पाप कर्मा तो बचते ही चले गए होए ही नहीं तकरीबन तकरीबन बचे ही रहे हैं साल पर
महाराज कहने के जे पाप कर्म नहीं कीते फिर पुन कर्मा दा की हाल रहा के महाराज ओ कुछ कुछ होए जरूर ने पर लिखन लगिया शर्म आई जे लिखे कदे कदे एक अद्धा तां मसा हुंदा सी ते जे कहीए भी लिखीए ते आखीए नाले तां हंकार होवेगा ते नाले की गिनती देंगे महीने च एक पुन कर्म होया सी के महीने च दो होए सन शर्म दे मारिया महाराज क्योंकि पुन कर्म बड़े थोड़े सन ओ नहीं लिखे गए ते पाप कर्मा तो तुहाडे लिखण दे काम ने बचा लिया के जे लिखांगे ते नंगे होवांगे इस करके ना करिए ते ना लिखिए बिल्कुल जिसले बंदा आत्म सर्वेखण वाल लग जाए ना अपने आप वाल वेखण लग जाए अपने आप नू भोखण लग जाए उदो पापां तो बच जाए इस करके साहिब दे दर दे उत्ते हथ बन के खड़ा अपराधी होके खड़ा सचे पातशाह कृपा कर लो मेरे कोलो तां कंचन नारी मैं जियो लुभत है मोह मीठा माया कर मंदर कोड़े खुशी मन अनरस लाया हर कम चेतना आवे क्यों छूटा मेरे हर राया मेरे राम ये नीच कर्म हर मेरे गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सा मेरे तू कृपा करके बख्श ले मैं ता अवगुणी गुनाकार पापी हां जिवे जानना हो अपराधी गुनाकार हो बेमुख मंदा भाई गुरदास के कथन अनुसार ये अरदास लेके बह जाइए कुछ पाप कर्म तो बच सकांगे कुछ पुन कर्म वाल प्रेरे जा सकांगे कदे अपने आप दे गुरबाणी अनुसार गुरबाणी दी कसवटी नाल अपने आप दे चाकी मार लिया करिए वेख लिया करिए किथे कु बैठे हां की हाल है किवें बख्शे जावांगे बख्शे जाण वास्ते अरदास बहुत वड्डा साधन है सिख दे कोल ते अरदास करन

0: दुख जाए पौड़ी।
1: सेव कीती संतोखी जिन्हें सचो सत्य आया, उन्हें मंदे पैर में रखियो कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अनपाणी थोड़ा खाया।

सच वरताया, जिसने तिस वेले सच तो तिनी सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया, जिनके हिरदे सच वसाया, मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया।

त्रिदर जत का जुर अगर थवाओ द्वापर तपे का सत अगर थवाओ कलयुग रथ अग्न का कूड़ अगर थवाओ शाम कैसे तुम्र सामी।

0: जिन पट अंदर बाहर गुजरे ते भले संसार किरण्यों लगा रव सती देखने विचार
1: रंग हसे रंग रोवे।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समरथ ओ परिपूरन परमात्मा ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर